नमस्ते डाउन इन जयपुर आई एम मेडिटेटिंग टू द साउंड ऑफ द वॉटर आई एम ग्रेटफुल हाउ ब्यूटिफुल माई सोल माई लाइफ एवरीथिंग I am blessed. All I have is peace in my mind.